0: পর দিন মুহূর্ত রকম কবারি সাবুক নগর একিম করে সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় সুগ্রাহী মহানুভাবহর তপাইলে আফ্নো সবারি সাধনকো বাস্তব রূপমা বুঝাউনু পর্ने সুগারী কর নবীকরণ বস্তু লগায়ত অন্য কর সম্বন্ধী বিতরণ হেনকা লাগি সম্বন্ধিত ইয়াতায়াত কার্যালয়মা গর কর প্রিন্ট মান্য ব্যাংক ভোচার গর্ন অগ্নি সবারী কর তথা বস্তুর একিম গর্ন তথা কর বুঝাই পছি প্রাপ্ত হুনে বিনা আফ্নো বুঝাইক করকো রকম আফ্নো সবারী নম্বর একিম গর্ন হুন এসে সূচনা মার্ফত অনুরোধ গরিন্ছ
1: কোশী প্রদেশ সরকার আন্তরিক মামলা তথা কানুন মন্ত্রণালয় বিরাট গণ
2: कलेज खोज्दैछु यार कक्षा एघारको लागि पढाइ र अनुशासन पनि कडा चाहियो अनि अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि उत्तिकै राम्रो भएको ठाउँ हुनु पर्यो नि
3: अरे यार त्यसो भए त सिद्धि बौद्धको केम्स कलेज जाऊ न तिमीले भनेका यी सबै कुरा त्यही त छ नि
2: बौद्ध टुसालमा अवस्थित केप्स कलेजमा कक्षा एघारका लागि साइन्स म्यानेजमेन्ट ल तथा ह्युमानिटिज संकायमा नयाँ भर्ना खुलियो उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार र प्रविधि मात्र सिकाइमा जोड़ दिँदै यहाँ अनुभवी दक्ष एवं समर्पित शिक्षक शिक्षिकाहरूद्वारा अध्यापन गराइन्छ सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा नियमित अतिरिक्त क्रियाकलाप र जिम्मेवार विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था
4: केप्स कलेज ने आफ्नो उज्जवल भविष्यको जग बसाल्नुहोस्
3: केप्स कलेज बौद्ध टुसाल
2: थप जानकारीका लागि सम्पर्क 9712501507 9712501507
4: सफलताको सही क्षण केप्स कलेज
0: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौं मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं वन संरक्षण वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण गरौं जीवन रक्षा गरौं
5: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश

बिहार सरकार विज्ञापन बोर्ड स्टार कलरिया तथा घोड़ामाई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सुमोदित कुंडी नगर पालिक पांच चमेड़ी स्कूल खुम्बू विगत देखिने ग्राहक विश्वास वृद्धि आयो न्यू स्टार कलरिया तथा घोड़ामाई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस थप सेवाहरू का साथ में सब हमारा सेवाहरू वेस्ट सम्बन्धी संपूर्ण काम किताब क्यालेंडर ब्रोशर बिल मीटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट बोर्डिंग बोर्ड फोटो जर्सी प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट छपाई गरिन्छ साथ ही स्टेशनरी का सामान होलसेल मूल्य में पाइन दिव्या कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूब लाइट यूनियर कंपनी को सब खाल का तार पाइन सुजी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य में बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ सिटी कंपनी को फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोवन नुहाउने गीजर गैस चूलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध छ एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकपी मशीन झाल ढोका में लगाउने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसेल मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा छेक्की पाल्चा वाल मिक्सर मोनी सावर बेसिन धारा कमोड पेन सेट पीवीसी पाइप सीपीवीसी पाइप पाइनु का साथ ही फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन कंपनी के मूल्य में पाइन्छ अनि यी सब मरम्मत पनि गरिन्छ र ग्यास वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को ट्यांकी कलर पनि गरिन्छ यति मात्र होइन समीरी बस पार्क में रहकर न्यू स्टार तथा ज्वालामय ऑटो वर्कशॉप बाट ग्यास सिलिंडर ग्यास सुनो साथ ही सब खाल का बाइक तथा स्कूटर मरम्मत कर पार्ट पुर्जा मोबिल हेलमेट रेनकोट होलसेल मूल्य में बिक्री नया तथा रिकंडीशन बाइक समेत अर्डर अनुसार उपलब्ध कराई संपर्क नंबर 0385239 0385260 मोबाइल नंबर 9860324426 र 9841909450 न्यू स्टार कलरिया तथा ज्वालामय अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सलिरी सुन।

0: बोलो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: स्कॉर्पियन अपराह्न को 4 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलू दुर्गु नगर पालिका 5 सोलू खुम्बु
3: वन जंगल को सीमा घर आंगन पर जोखिम टाने पारी पारी झाड़ी उठन घास साझ पर्दा घर छोड़ी गांव घूम जानू बाघ भालू गैंडा हाथी चित्त पसे पछि

0: 生を堪能してください。
1: はっきりさでで有名なものを起こすいいとなってくるんですのに、ビジネスサーマンキーマンボジャルとキャッチャーレタコスチャーレとっていいと思う。おっ、アブサーマンではタッパのルージャーのために起きちゃう。だってね、本当にコスチューさまなんでしょう。ビジネスサーマンにはガスの手が残る。安全主力のなショップとったんしゃだ。おらでる、たばいんしゃ。またこすだ、こすだたきさけも。なすのだね、そのビッグなのどパリカ、おらみのパースマンなんか、シャンティ、イストン&サプライズのね。てへん、ビジネスサンプルのね、サワンブル、ホイチとか、こては無理なパンション。ボールアドリックスに、ワイディングサーマン、ジェクジュー、ピヒトヤ、ロー、ネーサーマンパニパニ、プランのサーマンパニマルメトニ。もとぶんなこすだ、ベルタミルガスティバーニブリ。हजुर बिजुली को भरपर्दो सहयात्री शांति स्टोर एंड सप्लायर्स सोलू दुखुंड नगर पालिका वडा नंबर 5 सल्लेरी सोलू खुंडू। यहां बिजुली का संपूर्ण सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में पाने का साथ ही नया तथा पुराना सामान मरम्मत भी गरी छ। सब जानकारी का लागि संपर्क नंबर गुरु गुण नारायण श्रेष्ठ 9763 00 57 84 विवेक श्रेष्ठ 9862 82 00 00 सुनो धुपकुंडा नगर पालिका पास सोलिरी सुनो खुंडो। बालबालिकालाई लागू औषध दुरुपयोग पर्दछ। लागू औषध सामाजिक अपराध हो। कोही कसैले प्रयोग नगरन् बालबालिकालाई लागू औषधको प्रयोगबाट टाढा राख्नु, बालबालिकाको सङ्गतमा ध्यान दिनु, लागू औषधबाट हुने हानि र कानूनी परिणामको बारेमा जानकारी दिनु, बालबालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरी बालबालिकालाई घरमा माया र समय दिने गरी विद्यालयमा जीवन उपयोगी शिक्षा दिने गरी बालबालिकाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गराउनु।
2: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कृषि प्रदेशद्वारा जनहितमा सारी सन्देश।

0: प्रोलो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: टाइम
2: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदुपु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।

0: सोलु एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: साथमा
2: न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुण नगर पालिका 5

0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 PM रात को 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुकुम नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू
3: Wherever you are, stay connected with the wider...

0: प्रोनु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sony FM. Studio time.
2: 10 p.m. Rasko 10 baje.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामा ऑफसेट प्रेस सोलह दुकुम नगर पालिका 5 सोलह कुंभ